0: अहो ये पर मैं निरंजन हूं इसका मुझे खबर ही नहीं था।
1: नमस्कार आदरणीय श्रोता, आजको लागि द आर्ट अफ लिभिङको संयोजनमा सञ्चालित यो कार्यक्रम अमृतधारा यति नै।

0: गीता ज्ञान,
1: गीता ज्ञान संस्कृत भाषा रूपांतरण का साथ में प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। कार्यक्रम समर्पण। प्रत्येक शुक्रबार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुमधुर रसमय भजन का साथ में अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz में।

0: कार्यक्रम अध्यात्म ज्योतिमा अब अगाडि कार्यक्रम मधुरम यस कार्यक्रमका प्रायोजक
1: राधा कृष्ण ज्वेलर्स विशाल बजार पसल नम्बर 13 न्यू रोड काठमाडौँ राधा कृष्ण ज्वेलर्स रोजाई मेरो सधैँभरि
0: नमस्ते स्वागत अनि अभिवादन यो कार्यक्रम मधुरममा म सभ्यता तिवारी अब केही मधुर

0: FM अध्यात्म ज्योति शांति रेडियो
1: यहाँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम मधुरम। यस कार्यक्रमका प्रायोजक
2: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नम्बर 13, न्यू रोड, काठमाडौँ। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।

0: FM अध्यात्म ज्योति शांति रेडियो
1: यहाँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम मधुरम। यस कार्यक्रमका प्रायोजक
2: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नम्बर 13, न्यू रोड, काठमाडौँ। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: अहिले यहाँ कार्यक्रम

सत, रज और तम, इन नाम के तीनों बंधनों से बचना संभव है, और संभव ही नहीं, यही तो एकमात्र लक्ष्य भी है। जो इस बात को समझ जाते हैं वो शरीरधारी जीव प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाते हैं। ऐसा होने पर आप बंधन से छूट जाते हैं। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर इसी जीवन में परम आनंद स्वरूप अमृत का भोग करते हैं। परम आनंद वो आनंद की अवस्था है जो कभी खत्म नहीं होती दोस्तों। बाकी हमारे सांसारिक यानी कि वर्ल्डली प्लेजर बहुत ही थोड़े समय के होते हैं। हैरानी की बात है कि हम सब क्षणिक आनंद के पीछे भागते हैं, परम आनंद के पीछे नहीं।

कृष्ण की बातें सुन अर्जुन के मन में प्रश्न आता है और वो पूछता है, हे प्रभु, प्रकृति के तीनों गुणों को पार किया हुआ मनुष्य किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? जो पुरुष इन तीनों बंधनों से मुक्त हो जाता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, वो किस तरह का आचरण करता है, और सबसे बड़ी बात कि वो मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को किस प्रकार से पार कर पाता है? ऐसा क्या करना पड़ता है कि जिससे वो इन तीनों बंधन से छूट जाए? हमारा हर काम सत, रज और तम तीनों में से किसी एक से प्रभावित होता ही है, तो फिर हम इनसे बचे कैसे?

कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य इन तीनों में से किसी भी गुण से घृणा नहीं करता और समान भाव रखता है और ना तो उनमें प्रवृत्त ही होता है ना ही उनसे निवृत्त होने की इच्छा ही करता है, वो इन बंधनों से बच जाता है। ईश्वरीय ज्ञान रूपी प्रकाश होता है सतोगुण, कर्म करने में आसक्ति होती है रजोगुण, तथा मोह रूपी अज्ञान को कहते हैं तमोगुण। जो इन तीनों से घृणा ना कर ना इनसे द्वेष नहीं रखता, ना तो वो इन गुणों में रुचि दिखा इनमें शामिल होने की कोशिश करता है और ना ही इन गुणों से निवृत्त होने की कोशिश करता है। इन गुणों को पहचान इनके बंधन से छूटना है, न कि इनसे घृणा करनी है।

जब आप उदास होते हैं तो क्या किसी भी वस्तु या बात में रुचि लेते हैं? नहीं। उसी तरह से अगर हमें सत, रज और तम गुणों से छुटकारा पाना है तो एक उदास व्यक्ति की तरह ही बर्ताव करना है। कृष्ण कहते हैं कि जो उदासीन भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता है और गुणों को ही कार्य करते हुए जानकर एक ही भाव में स्थिर रहता है, वो इन गुणों से पार हो जाता है। कर्ता आप नहीं, आपके ये गुण हैं। एक उदासीन की तरह आपको इनका दृष्टा यानी कि देखने वाला बनना है। ना इन गुणों में रुचि रखनी है और ना ही इनसे घृणा करनी है। सम दुख

ते ही। समानता की स्थिति क्या होती है? जब आप सुख और दुख में समान भाव में स्थित रहते हैं, जब आप अपने आत्म भाव में स्थित रहते हैं, आपको बाहर के किसी भाव की आवश्यकता नहीं। जब आप मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझने लगते हैं, जब आपके लिए न तो कोई प्रिय है और न ही कोई अप्रिय, जब आप निंदा और स्तुति में अपना धीरज नहीं खोते, अगर आप इस तरह के समान भाव में आते हैं तो इन तीनों सत, रज और तम गुणों के बंधन से बच सकते हैं। यही उस पुरुष के लक्षण होते हैं जो इन गुणों से

प्रकृति के तीन गुणों सत्य, रज और तम से पार पाना आसान नहीं। अर्जुन ने सवाल किया था कि जो इनसे पार पाता है उसके क्या लक्षण होते हैं। उसी का उत्तर देते हुए कृष्ण बता रहे हैं कि जो मान और अपमान को एक समान समझता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में समान भाव में रहता है तथा जिसमें सभी कर्मों के करते हुए भी कर्तापन का भाव नहीं होता है, ऐसे मनुष्य को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। सबसे बड़ी बात, कर्मों को करते हुए आप ये न समझिए कि उस कर्म को आप कर रहे हैं, उनको आपके गुण कर रहे हैं, अर्थात कर्ता वो हैं।

अनन्य भक्ति वो होती है जिसमें कोई और न आ सके, जो मनुष्य हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति में स्थिर रहता है, वह मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को अति शीघ्र पार करके ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है। चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, सुख हो या दुख हो, हालत आसान हो या मुश्किल हो, मन में से कृष्ण कभी नहीं निकलना चाहिए। यहां पर कृष्ण से मतलब परमात्मा भी है दोस्तों, और आपका कर्म भी, जिसे आपको कर्तव्य की तरह करना है। अगर मन में हमेशा बस कर्म करने की इच्छा रहेगी तो आप निश्चित ही अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे।

कृष्ण ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, कृष्ण ही अंतरात्मा की प्रतिष्ठा है, इसीलिए वो शाश्वत यानी कि हमेशा के लिए है। कृष्ण अपने रूप को बताते हुए कहते हैं, उस अविनाशी ब्रह्म पद का मैं ही अमृत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, धर्म स्वरूप और परम आनंद स्वरूप एकमात्र आश्रय हूं। क्योंकि कृष्ण परमात्मा की प्रतिष्ठा हैं, तो वो आश्रय हैं जिनमें हमें परम आनंद मिलेगा। अखंड आनंद अगर आपको चाहिए दोस्तों, तो ये ज्ञान चाहिए कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जाएंगे, तो उसका उत्तर कृष्ण ही है। कृष्ण में ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, कृष्ण से ही आपको सब कुछ मिलेगा और जो मिलेगा वो भी कृष्ण ही है। तो दोस्तों, ये था गीता का 14वां अध्याय। इस अध्याय में उन्होंने प्रकृति के तीन गुणों को खोल के हमारे सामने रखा, कैसे ये गुण ही हमारे कर्म के कर्ता होते हैं, हम नहीं। इन्हीं गुणों के खेल से निकलकर, इस बंधन से छूटकर हम मोक्ष को पा

कृष्ण बता रहे हैं कि हमारा यह संसार एक अविनाशी वृक्ष जिसका पेड़ कभी नाश नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता, न सूखता है न मरता है। यह ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्तोत्र हैं, और जो इस अविनाशी वृक्ष को जानता है वही वेदों का जानकार है। जड़ें ऊपर की ओर हैं, इसका अर्थ यह होता है कि मूल ऊपर है, यानी कि परमात्मा ऊपर है। शाखाएं नीचे की ओर से मतलब हुआ कि प्रकृति नीचे है, ऊपर परमात्मा और नीचे प्रकृति। जिसने इस बात को जाना है ना दोस्तों, उसको सब विद्या प्राप्त हो गई है, अर्थात वेदों का ज्ञान हासिल कर लिया है। और जिसने नहीं जाना, उसके लिए यह जन्म मृत्यु का चक्कर हमेशा के लिए लगा रहेगा। इसीलिए ये वृक्ष अविनाशी है।

इस संसार रूपी पेड़ की जो समस्त शाखाएं हैं, इन्हें आप अलग अलग योनियां मानिए, यानी कि हम सब प्राणी जो अलग अलग योनियों में बटे हुए हैं, ये शाखाएं नीचे और ऊपर सभी ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा विकसित होती हैं। जो नई कोपलें, नए पत्ते निकलते हैं, वो हमारी इंद्रियों के विषय हैं। इस पेड़ की जड़ें जो नीचे की ओर जा रही हैं, वो असल में बंधन हैं। इन्हीं जड़ों में सकाम कर्म करने वाले, यानी के फल के लिए कर्म करने वाले बंधे रहते।

कोई भी पेड़ हो, उसकी जड़ें नीचे मिट्टी में ही जाती हैं, शाखाएं चारों तरफ फैलती हैं, लेकिन जो ये संसार रूपी वृक्ष है, इसके वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। और इसकी वजह है क्योंकि ना तो इस पेड़ का आदि है और ना ही इसका अंत है, ना तो यह पेड़ कहीं से शुरू हो रहा है, ना ही इसका कोई अंत दिखता है। दोस्तों, आप कैसे ऐसे पेड़ की कल्पना कर सकते हैं? वैसे तो पेड़ों को आधार धरती होती है, लेकिन इस पेड़ का कोई आधार ही नहीं। हां, लेकिन अगर आप हमारी इस दुनिया के मोह, लोभ और बंधन को तोड़कर वैराग्य की अवस्था में आए तो इस पेड़ को काट सकते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर आप प्रकृति के तीन गुणों से बच पाए तो इस पेड़ का भी अनुभव कर सकते हैं।

वैराग्य यानी कि निष्काम कर्म में अपना सब कुछ समर्पित कर देना। वैराग्य ही वो हथियार है जिससे मनुष्य इस सांसारिक वृक्ष को काटकर प्रभु तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। जो मनुष्य प्रभु तक पहुंचने के मार्ग पर एक बार आ जाता है वो फिर कभी वापस नहीं लौटता। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य को उस परमात्मा के शरणागत हो जाना चाहिए जिस परमात्मा से इस आदि रहित संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तार होता है। संसार रूपी वृक्ष अगर कटेगा नहीं तो प्रभु का रास्ता कभी नहीं मिलेगा।

संसार रूपी वृक्ष कैसे कटता है, उसे बताते हुए कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मान, प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त है और जिसने उन मनुष्यों की संगति को त्याग दिया है, जो सांसारिक विषयों में लिप्त है, ऐसा मोह से मुक्त हुआ मनुष्य ही उस अविनाशी परम धाम को प्राप्त करता है। हम सब कुछ सोसाइटी में अपने स्टेटस के लिए करते हैं दोस्तों, इसी मान प्रतिष्ठा के मोह से मुक्त होना है और ऐसे लोगों से दूर रहना है जो इस दुनिया में कर्म सिर्फ फल के लिए करते हैं। उनकी संगत से बचना है दोस्तों। अपनी सांसारिक कामनाओं को समाप्त कर हमें सुख दुख का भेद खत्म करना है, और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तभी हमें प्रभु मिलेंगे।

कृष्ण सांसारिक पेड़ को काट परम धाम पर पहुंचने की बात कर रहे हैं। क्या है यह परम धाम? वैसे तो सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, लेकिन इस परम धाम को वो प्रकाशित नहीं कर पाता। न सूर्य न चंद्रमा इस परम धाम को प्रकाशित कर सकता है और ना ही अग्नि। यह परम धाम ऐसा गंतव्य यानी कि ऐसी डेस्टिनेशन है दोस्तों, जहां पहुंचकर कोई भी मनुष्य इस संसार में वापस नहीं आता, और यही कृष्ण का परम धाम है। सब उस परम धाम की बातें तो करते हैं, लेकिन क्या समझते भी हैं कि वो परम धाम क्या है? और यही कृष्ण समझा रहे हैं। श्री

प्रकृति में जब ब्रह्म का अंश मिलता है तो हम प्राणी बनते हैं। इसी बात को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि संसार में प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। जो भी जीवित प्राणी आप देखते हैं उन सब में कृष्ण का ही अंश है। दोस्तों, हर एक प्राणी में ब्रह्म है और यह सब प्राणी अपनी मन सहित छहों इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर काम करते हैं। जो जो प्रकृति के तीन गुण हमसे करवाते हैं हम वो करते हैं। कर्ता यानी कि करने वाली प्रकृति है, हम नहीं। इसीलिए जब हम प्रभु के परम धाम को पाने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर का ब्रह्म उस ब्रह्म में मिल जाता है जिसका कि वो अंश है, और इसीलिए वो वापस धरती पर कभी नहीं आता।

जब तक हमारे शरीर का जीवन है उसमें आत्मा रहती है। शरीर का समय खत्म होने पर आत्मा को दूसरे शरीर में जाना होता है। लेकिन दूसरे शरीर में जाने का आधार क्या होता है? आपके कर्म, छहों इंद्रियों के कार्यों के जो संस्कार होते हैं, उसके साथ ही आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में चली जाती है। ये एकदम वैसे ही होता है जैसे वायु गंध को एक स्थान से ग्रहण करके दूसरे स्थान में ले जाती है। जो भी आप करते हैं, सोचते हैं, उसका हिसाब किताब होता है दोस्तों। मृत्यु के समय यही हिसाब किताब आपकी आत्मा के अगले शरीर में संस्कार की तरह जाते हैं। तो जो भी करें, इस बात को ध्यान में रखें दोस्तों, प्रभु के नियम से कोई भी नहीं छूटता।

एक शरीर का जीवन खत्म होता है, उसकी देह मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन आत्मा पिछले जन्म के संसार के साथ दूसरे शरीर में जाती है और फिर दूसरे शरीर में वही प्रक्रिया फिर से चलायमान हो जाती है। जीवात्मा फिर से कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन की सहायता से ही विषयों का भोग करता है, फिर से सुनने, खाने, देखने जैसे कामों में लग करके कर्म करने लग जाता है और फिर से एक हिसाब किताब बनने लगता है अगले जन्म का। इसीलिए यह जरूरी है कि आप कोशिश करें कि आत्मा शरीर में से निकल सीधा ब्रह्म से मिले और आप जन्म मृत्यु से बच जाएं।

जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में पिछले जन्म के संस्कार लेके आती और जाती रहती है। ये सिर्फ वो ही समझ सकते हैं जिन्हें ज्ञान प्राप्त है। जो ये जानते हैं कि जीवात्मा कैसे शरीर का त्याग कर सकती है, ज्ञानी ही जानते हैं कि कैसे जीवात्मा शरीर में स्थित रहती है और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन होकर विषयों का भोग करती है। लेकिन मूर्ख मनुष्य कभी भी इस प्रक्रिया को नहीं देख पाते हैं। केवल वही मनुष्य देख पाते हैं जिनकी आंखें ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गई हैं। ऐसे मूर्ख जो गीता या प्रभु के ज्ञान को बोरिंग बताकर बातों को नहीं समझते, कृपया करके उनसे बच के रहिए दोस्तों।

हमारे अंदर जो आत्मा है उसे जीवात्मा कहते हैं। उसी के आने की जाने की प्रक्रिया से ही ये दुनिया चल रही है। अगर आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त हो जाती है तो वो वापस अपने घर यानी कि ब्रह्म में मिल जाती है, जहां से वो आई थी। लेकिन कैसे? योग से। योग के अभ्यास में प्रयत्नशील मनुष्य ही अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को देख सकते हैं। किंतु जो मनुष्य योग के अभ्यास में नहीं लगे हैं, ऐसे अज्ञानी प्रयत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं देख पाते हैं। आपको निरंतर योग करना होगा, हार न मानते हुए अपने मन शरीर और बुद्धि को दृढ़ करके ही आप आत्मा को जान पाएंगे।

सूर्य के प्रकाश से ही हमारी धरती चलती है, इसी प्रकाश के ताप से ही पानी का वाष्पीकरण होता है और फिर वर्षा होती है, खेत हरे भरे होते हैं, हमारे पेट भरते हैं और हम जीवित रहते हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट का कहना है कि सूर्य में एक फ्यूजन प्रोसेस चल रहा है जिससे यह प्रकाश होता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्रकाश सूर्य में स्थित है जिससे समस्त संसार प्रकाशित होता है, जो प्रकाश चंद्रमा में स्थित है और जो प्रकाश अग्नि में स्थित है, उस प्रकाश को तू मुझसे ही उत्पन्न समझ। कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि जो ज्योति में आपको प्रकाश दिखता है ना, वो स्वयं कृष्ण ही हैं।

हम सब कृष्ण के संकल्प का ही नतीजा हैं। उसी के ऐश्वर्य और शक्ति की वजह से प्राणियों में सांस का आना जाना होता है, और सिर्फ प्राणियों में ही नहीं, कृष्ण कहते हैं कि वो ही चंद्रमा के रूप से वनस्पतियों में जीवन रस बनकर समस्त प्राणियों का पोषण करते हैं। धरती में पानी, खाद, उर्वरता सब कुछ के मिश्रण के बाद ही फसल बढ़नी शुरू होती है। इस बढ़ने को ही कृष्ण पोषण करते हैं। यह उनका ही संकल्प है जो हम में प्राण बन के हृदय को गति देता है, फसल में रस बन के उनको पौष्टिक और स्वाद युक्त बनाता है।

अन्न हमारा आधार है। जीवित प्राणी को अगर अन्न नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। अन्न को चार प्रकार का बताया गया है, चबाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही पाचन अग्नि के रूप में समस्त जीवों के शरीर में स्थित रहता हूं। मैं ही प्राण वायु और अपान वायु को संतुलित रखते हुए चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। वो अग्नि जो हमारे अन्न को पचाकर हमें शक्ति देती है, ये अग्नि कृष्ण ही है। इससे पहले कृष्ण ने कहा था कि जो आपको ज्योति दिखती है उसका प्रकाश भी वे स्वयं हैं, और अब वो स्वयं को पाचन अग्नि बता रहे हैं। यहां तत्व यह है कि हम सब क्योंकि कृष्ण के संकल्प का नतीजा हैं, इसलिए हमारी इस पूरे ब्रह्मांड की हर क्रिया का आधार स्वयं कृष्ण हैं।

हमारे अंतःकरण में जो आत्मा है वो कृष्ण ही है। ज्ञान का आना या न आना या ज्ञान का ना रहना कृष्ण से ही होता है। कृष्ण की वजह से स्मृति, विस्मृति और ज्ञान होता है, यानी कि हमारे कर्मों पर निर्भर करता है कि हमें ज्ञान प्राप्त होगा या नहीं होगा। आवश्यकता के समय कई बार आप बहुत जरूरी बात भूल जाते हैं, यह विस्मृति कृष्ण के कारण ही होती है। याद आने और भूल जाने के पीछे वो ही हैं। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं, मुझसे ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं और मैं ही समस्त वेदों को जानने वाला हूं।

संसार में जो भी जीव होता है एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। गलत। संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, एक नाशवान यानी कि क्षर और दूसरे अविनाशी यानी अक्षर। जो क्षर मतलब कि नाशवान होते हैं उन्हीं की मृत्यु निश्चित है, लेकिन समस्त जीवों की आत्मा अविनाशी है, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो कभी नहीं मरती। ये ही सारे ज्ञान का आधार है। इसके आगे ही कृष्ण का बाकी का ज्ञान बढ़ना शुरू होता है। यही आपको समझना होगा दोस्तों कि आत्मा अमर है, उसी ब्रह्म का अंश है। जिस दिन वो उसी ब्रह्म में मिलेगी तो आपको मुक्ति मिलेगी, वरना नहीं।

क्षर और अक्षर इन दो तरह के जीवों के बारे में कृष्ण ने बताया है कि क्षर वो जो मर जाता है और अक्षर यानी कि आत्मा जो अमर है। लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त इन दोनों से अलग भी एक श्रेष्ठ पुरुष है जिसे कहा जाता है परमात्मा। ये अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का भरण पोषण करता है। तीनों लोकों का अर्थ है पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। परमात्मा अपने चैतन्य बल से इन तीनों लोकों में प्राण फूंकता है, सबको जिंदा रखता है और तभी ये सृष्टि चलती है। जो हमारे अंदर है वो आत्मा है, जो बाहर है वो परमात्मा है, और आत्मा और परमात्मा एक ही हैं।

0: विज्ञान।
1: क्षर और अक्षर की परिभाषा को समझा कृष्ण ने बताया कि इन दोनों के अलावा एक श्रेष्ठ पुरुष भी है जो है परमात्मा, और ये पुरुषोत्तम पुरुष कृष्ण ही हैं। ये क्षर और अक्षर दोनों जीवों से परे और सर्वोत्तम हैं। वेदों में जिनका पुरुषोत्तम नाम से वर्णन होता है वो कृष्ण ही हैं। हमारी दुनिया के उत्तम की परिभाषा से इसे जोड़ के आप मत देखिएगा। यह उत्तम का मतलब धन, दौलत, वैभव या प्रतिष्ठा से नहीं दोस्तों, यहां उत्तम से अर्थ है जो अविनाशी। हमारी दुनिया के उत्तम की परिभाषा से इसे जोड़ के आप मत देखिएगा। यह उत्तम का मतलब धन, दौलत, वैभव या प्रतिष्ठा से नहीं दोस्तों, यहां उत्तम से अर्थ है जो अविनाशी। तीनों लोकों में प्राण शक्ति को धरता है, जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं, जो हम सब में है और हम सबके बाहर भी है।

जो इस बात को समझता है कि कृष्ण ही पुरुषोत्तम हैं, जो क्षर यानी कि खत्म हो जाने वाले जीव को और अक्षर यानी कि न मरने वाली आत्मा को जानता है, जो बिना किसी संशय के कृष्ण के इस भगवान रूप को समझता है, वह मनुष्य कृष्ण की असली भक्ति करता है। यहां भक्ति को भजन या कीर्तन मत समझिएगा दोस्तों। भक्ति का अर्थ है स्वयं की प्रकृति, आत्मा और परमात्मा को जानना। जिसको आप जानते नहीं उसको प्राप्त कैसे करेंगे? भगवान को समझेंगे तभी तो उसकी प्राप्ति के लिए कोशिश करेंगे। यह कोशिश ही भक्ति है दोस्तों, और यह उसी के लिए संभव है जो अपने और परमात्मा के स्वरूप को समझता है।

0: पुरुष, आत्मा, परमात्मा और पुरुषोत्तम के ज्ञान को शास्त्रों का अति गोपनीय रहस्य बता रहे हैं। जो इस परम ज्ञान को सही प्रकार से समझता है, भगवद्
1: गीता वह
0: अध्याय 16 और उसके सारे प्रयत्न।
1: जय श्री कृष्ण दोस्तों,
0: भला हो अर्जुन,
1: एक ही तरह की परिस्थिति में लोग अलग अलग तरीके से रियता
0: ज्ञान देने की आवश्यकता,
1: अगर किसी को मदद की जरूरत है
0: जैसे
1: तो कोई आगे आकर मदद करता है,
0: ज्ञान हासिल हुआ
1: और कोई नजरें फेर भी लेता है।
0: इसलिए भी है
1: कि कभी सोचा है आपने के लिए कि ऐसा क्यों होता है?
0: वेद और सारे
1: इसी बात का उत्तर मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ
0: भगवद गीता के 16वें
1: सारे वेदों को जानने वाला,
0: जिसका शीर्षक है
1: में खुद को ही
0: भाग योग
1: भी कहा है,
0: क्यों
1: कुछ लोग दैवी संपदा
0: ने जो कुछ भी
1: और
0: है,
1: कुछ लोग आसुरी संपदा के लक्षणों
0: के साथ पैदा होने
1: बता दिया है।
0: और क्या होते हैं ये लक्षण?
1: पुरुषोत्तम योग,
0: मैं शैलेंद्र भारती
1: पुरुषोत्तम
0: आप सभी की आज्ञा से प्रारंभ करता हूँ।
1: भगवद गीता का अध्याय 16 है,
0: दैवासुर संपद
1: ये भी बताया
0: कि अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो और

भगवान कहते हैं कि जहां डर न हो, अंतःकरण एकदम स्वच्छ हो, तत्व ज्ञान को हासिल करने के लिए ध्यान योग में निरंतर प्रतिज्ञा हो, सात्विक दान हो, इंद्रियों का दमन करने की इच्छा हो, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा की जाए और अग्निहोत्र जैसे उत्तम कर्मों का पालन हो, वेद शास्त्रों का पठन पाठन कितने भी कष्ट आए लेकिन स्वधर्म का पालन किया जाए, ये सारे लक्षण होते हैं दैवी संपदा के। संपदा का अर्थ वैसे तो धन दौलत और ऐश्वर्य होता है दोस्तों, लेकिन दैवी संपदा के गुण हमारी दुनिया की संपत्ति से बिल्कुल अलग होते हैं। कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि यही तो सबसे बहुमूल्य संपत्ति होती है।

दैवी संपदा के लक्षणों को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि ना मन से सोच के, न वाणी से बोल के और ना ही शरीर से कभी भी किसी को कष्ट देना चाहिए। यथार्थ और प्रिय भाषण कहना चाहिए, यानी सिर्फ सच और ऐसी बातें बोलनी चाहिए जो सबको प्रिय लगें। जो आपका बुरा करें उसके ऊपर भी कभी क्रोध न करें। घमंड और अभिमान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा न सोचें कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं। चित्त को चंचलता से बचाकर उसे स्थिर करना चाहिए। किसी की भी बुराई न करें। सब प्राणियों पे दया की जाए। इंद्रियों में आसक्ति को न होने दें। ये सारे लक्षण दैवी संपदा से युक्त लोगों के ही हो सकते हैं।

0: तेज वो गुण है जिसके सामने छोटे घटिया या बुरे लोग भी इसके प्रभाव में आकर के अच्छे काम करने लगते हैं। कृष्ण दैवी संपदा के लक्षणों को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि तेज, क्षमा, धैर्य यानी कि संयम, बाहर की शुद्धि यानी कि अच्छे संस्कार, किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने अंदर घमंड का बिल्कुल न होना ही दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। देवताओं के गुण लेकर जो पैदा होता है उसे ही दैवी संपदा से युक्त कहा जाता है। दोस्तों, जो इन गुणों के साथ पैदा नहीं हुआ लेकिन अगर वो अपना बर्ताव ऐसा कर ले तो भी तो उसे दैवी संपदा से युक्त ही कहा जाएगा।
1: श्रोता, आज को लागि कार्यक्रम श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान इतने। नमस्ते।

0: रोड दमकल नजिक स्टैंडर्ड चार्टर बैंक मुनि संपर्क नंबर 5320411 98020 76888।
1: जे जे ज्वेलर्स

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: अनि मलाई

0: சாவேல் சுச்சேபாடி.
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सक्नुहुनेछ.
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो.
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ.
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं.
4: जेजे ज्वेलर्स
5: प्रस्तुत छ. जेजे ज्वेलर्स. जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्शन. सुन चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्.
6: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यु रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि.
7: सम्पर्क नम्बर 5320411 98026788.
5: जे जे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान.

0: करे।
1: और कभी इकरार में इनका रिचना चिन चिन चू,
0: बड़ा कातिल मेरा दिलदार चिन्ना चिन।

0: तमाशा
1: नहीं।
0: देखो सौ फीसदी फिल्म ये बोले नाचे गाए, कहो क्या झूठ बात है
1: नहीं।
0: तो बस फिर देखो भालो जवानी के गुण गालो।

0: गोलियां कर दे शायद, हर सीन हजारों इसमें मारा मारी से भरपूर। ठंकर करके
1: कहां जाने में,
0: थोड़ा भड़के
1: कहां जाने में,
0: छाती झड़के
1: कहां जाने में।
0: देखो मेरे यार जवानी खेल अजब सिखलाए,
1: हाँ हाँ दो दीवाने
0: आए।
1: अरे एक

0: दो दीवाने एक तमाशा
1: लाए।
0: देखो सौ फीसदी फिल्म ये बोले नाचे गाए, कहो क्या झूठ बात है
1: नहीं।
0: तो बस फिर देखो भालो।

मोहब्बत की आग में जल मरने वालों के, मगर अफसोस आज की दुनिया में मजनू फरहा रांझा तो है, मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों आशिक फिर भी आशिक है, और वो आज की बेवफा लैला जो उसकी नजरों के सामने है, एक ही बात कहना चाहता है, बोलिए क्या।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: मलाई ट्रैक सूट चाहियो,
2: मलाई फ्रॉक,
3: मलाई पनि सूट,
4: अनि मलाई

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क करना सक्नुहुने छ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं।
4: जेजे ज्वेलर्स
2: प्रस्तुत छ
4: जेजे ज्वेलर्स।
2: जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्सन। सुन चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
5: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि।
6: सम्पर्क नम्बर 5320411 98026788।
2: जे जे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क करना सक्नुहुने छ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो।
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स
4: प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन, चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्सन। सुन, चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
5: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि। सम्पर्क नम्बर 53204118 0026786888।
4: जे जे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान।

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँ भरि। थरी थरी राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँ भरि।

0: नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ यहाँलाई द आर्ट अफ लिभिङ को संयोजनमा सञ्चालित यो कार्यक्रम अमृत धारामा। अब हामी द आर्ट अफ लिभिङ का प्रणेता श्री श्री रवि शंकर ज्यू को प्रवचन श्रृंखला को क्रममा आजको प्रवचन सुन्ने छौं।
1: जय गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये होगा कि हम जो सब यहाँ पर इतने सारे लोग सत्संग के लिए इकट्ठा हुए हैं, रोज हम सत्संग करते हैं, इसकी क्या महत्ता है, क्या इम्पोर्टेंस है सत्संग की?
2: जिसने इसका आनंद लिया उनको पता है कितना मजा है इसका। अपना एंटरटेनमेंट में जाते हैं, उससे क्या मिलता है? अभी क्रिकेट हो रहा, IPL वाच करते हैं तो उसमें कुछ मिलता है? आप इन सब खुशी को इकट्ठे करके एक तरफ रखो और सत्संग का आनंद एक तरफ रखो तो पता चलेगा कि तो लगता है कि वाह, यही है बात, कुछ और है नहीं, तो क्यों लोग सत्संग के लिए पागल होएंगे, है ना?
1: पर इससे कोई किस तरह से पाप कटते हैं या फिर ये केवल एक आनंद देने के लिए ही एक हम सब इकट्ठा होते हैं सत्संग में?
2: हाँ, आनंद लेने के लिए है। आनंद तभी मिलता है जब हमारे भीतर स्वच्छता शुभ्रता आने लगती है
1: जी,
2: तनाव से मुक्त होते हैं
1: जी। मेरा अगला प्रश्न ये होगा, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो कि मेरे से बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते हैं समय समय पर, तो उनका एक कॉमन प्रश्न होता है कि सारे भगवान हैं वो भारत में ही क्यों हुए?
2: देखिए, हर जगह का कुछ ना कुछ विशेषता होती है
1: जी।
2: आप पूछोगे सारे एप्पल ट्री शिमला में ये क्यों होते हैं, हिमाचल में ये क्यों है? माने ऐसा नहीं है भगवान दूसरे जगह नहीं है, भगवान सर्वव्यापी है, सब जगह है, मगर भारत की अपनी विशेषता है, यहाँ अपना आध्यात्म। तो हर देश की अपनी अपनी कुछ खूबी है। तो मगर ये जो मुख्य अवतार हुए हैं, राम कृष्ण बुद्ध, ये सब भारत में ही जन्म हुए
1: जी। जी गुरुदेव, अगला प्रश्न मेरा उस समय से है जब सती माता अपने पिता के घर पे जा रही थी, पर शिव जी को उन्होंने नहीं बुलाया था पिता ने, तब सती माता को रोकने का प्रयास करा था शिव जी ने कि आप मत जाइए देवी, तब सती माता ने अपने 10 महाविद्या का रूप लिया था। जब शिव जी को पता था कि क्या होने वाला है, वो अंतर्यामी हैं, जब माता सती को पता था कि क्या होने वाला है, तो ये फ्रिक्शन क्यों हुआ? ये 10 महाविद्याओं में उनको टूटना, उनका इतना शिव जी पे क्रोधित होना, ऐसा क्यों हुआ?
2: देखिए, पुराण को आप समझने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। ऊपर से देखने से एक कथा है, कई बार अटपटा सा लगता है कि शिव जी को बालक ने रोक दिया, वो इतना क्रोधित हो गए, साधारण मनुष्य भी इतना क्रोधित नहीं होता, है ना? फिर उसने क्या त्रिशूल लेके अपने बेटे का गला काट दिया, वो तो सर्वज्ञ बोलते हैं, उनको कैसे पता नहीं चला ये खुद का बेटा है? इस तरह से कई सवाल उठेंगे आपके मन, क्यों आप सिर्फ कहानी को देखते हो
1: जी।
2: कहानी नहीं, उसके पीछे तत्व है, ये सब सिंबॉलिक है, माने प्रतीकात्मक है। वो वहाँ गहराई में देखेंगे तो आपको आप अचंबा हो उठोगे, इसका क्या कितना अद्भुत रहस्य है इसमें। ऐसे इसलिए पुराणों को कभी भी हम फेस वैल्यू पर नहीं लेना चाहिए। हमने इस पर काफ़ी बात बताया, गणेश रहस्य
1: जी,
2: ऐसे ही दक्ष रहस्य, दक्ष प्रजापति।

0: बताते कि दक्ष माने क्या, स्किल। जब शिव तो भोले भाव है, भोले भाव है, दक्ष बड़े चतुर है और चतुराई और भोलेपन के सामने नहीं चलता। भोलेपन में बल होता है, कभी चतुराई हार जाती है। इस तरह से इसकी गहराई में सोचना चाहिए।
1: जी गुरुदेव, एक प्रश्न मेरे दिमाग में हमेशा आता रहता है, क्योंकि मैंने रामचरितमानस रामायण की ऐतिहासिकता पे बहुत काम करा है और महाभारत की ऐतिहासिकता पे भी काम किया है। तो जब मैं ये देखती हूँ कि इनके महानायक रामायण के भी और महाभारत के भी, राम जी और कृष्ण जी, इनका जब देहावसान का समय आया, मृत्यु का समय आया, तो दोनों का नेचुरल डेथ नहीं थी, दोनों की एब्रप्ट एंडिंग हुई है, उन्होंने एक नेचुरल तरीके से देहावसान नहीं किया। तो ऐसा क्यों, इसके पीछे कौन सा सूक्ष्म रहस्य या ऐसी कौन सी चीज़ रही होगी?
0: आप दसों अवतारों को लोगे या और सब चीज़ों को लोगे तो इसमें कई सारे प्रश्न उठते हैं। परशुराम अवतार ही ले लो, परशुराम अवतार को ले, वो तो अरे परशुराम को कौन बोलता है अवतार? ये कहेंगे कि अरे उससे बेहतर है, हम अच्छे आदमी हैं। इसका मतलब ये है कि ईश्वर सब जगह है, सब में है, और मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री राम का नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम है, कि वो एक जीवन का एक आदर्श दिखाए। सुखी साम्राज्य का क्या हो सकता है ना? अब वैसे ढूंढने जाओगे आप, श्री राम में भी बहुत सारी गलतियां निकाल सकते हैं। धोबी ने तो बता ही दिया, उसके बाद एक धोबी की बात सुन के अपने पत्नी को भेज दिया। इस तरह से कई वहां पर कमियां दिखेगी आपको। ऐसे कृष्ण के जीवन में देखोगे तो बिल्कुल उल्टा, जो जो श्री राम ने किया उसका एकदम विपरीत किया श्री कृष्ण ने।
1: जी,
0: तो इसलिए कृष्ण को कहते 16 कला के, श्री राम को कहते 12 कला।
1: जी,
0: तो ये जो इसमें जो गहराई है, इसका सिद्धांत को पकड़ना चाहिए हमें, और सिद्धांत मूलतः और कैसे हमारे जीवन के साथ संबंध रखते। अभी एक अध्यात्म रामायण है, उसमें कहते कि रामायण का अध्यात्म क्या चीज़ है, माने रामायण कभी हुआ एक देशीय एकालिक नहीं है, ये सार्वभौमिक सार्वकालिक है हमारे, माने अभी भी चल रहा है। हमारी आत्मा ही राम है, मन सीता है, अहंकार रावण है और श्वास हनुमान जी है, होश लक्ष्मण जी है। इस तरह से देखेंगे रामायण घटित हो रहा है हमेशा। ऐसे भगवत गीता ऐसे नहीं समझते कभी घटित हो गया, भगवत गीता तो रोज रोज हो रहा है। जिस दिन आप विषाद करते हो हर चीज़ ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं रहो, तो पहला अध्याय में हो आप, घबरा गए हो तो पहले अध्याय में हो, और थोड़ा बुद्धिमत्ता दिखाती हो मगर हो मूर्ख तो दूसरे अध्याय में हो। इस तरह से कदम कदम देखोगे तो जीवन के 18 जो पड़ाव है वो 18 अध्याय होता है। कभी भक्ति उमड़ती है हमारे भीतर तो हम कहते हैं हम 12वें अध्याय में बैठ गए। तो जीवन के साथ इसको जोड़ के देखना चाहिए। और ठीक है, हुआ होगा भाई, हम क्यों उनके लॉयर बने? हम ना रामचंद्र जी के लॉयर ना कृष्ण जी के लॉयर है, ठीक है। हम अपना देखते हैं आज क्या है, अपना जीवन में हमें क्या देना है, लेना है, वो देखना चाहिए।
1: तो गुरुदेव, जिस तरीके से बोला जाता है कि भगवान की भक्ति करोगे तो स्वर्ग मिलेगा और कर्म अच्छे करोगे तो स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा?
0: अच्छा, ठीक है, कर्म अच्छे करे तो अच्छा ही मिलेगा, उससे सुख मिलेगा, वो तो कोई ग्रंथ से तुम्हें सीखना नहीं है। अभी देखो तो, अब कुछ गलत करके देखो, किसी का तपाचा किसी का मार के देखना क्या मिलता है, और किसी को कुछ अच्छी बातें कह के देखो क्या मिलता है। ये तो अच्छे कर्म का अच्छे फल तो अभी इंद्रिय सिद्ध होगा ना भाई, जीवन में खुद ये सब अनुभव कर ही सकते हैं, हम लोग करते भी हैं। हाँ, कभी कभी ये प्रश्न आता है, हम सब अच्छा है करते रहे, हमारे साथ क्यों बुरा हुआ है?
1: अगला ही प्रश्न ये था।
0: हाँ, हमको क्यों, हमने कभी किसी को बुरा नहीं चाहा, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ? तब मैं ये कहूँगा, तुम सिर्फ इस जीवन को देख रही हो, थोड़ा पीछे मोड़ के देखो, तुमने कई उधार ले रखे कहीं किसी से, अब वो लोग आके तुम्हारा दरवाजा खटखटा रहे हैं। ये एक ही जन्म थोड़ी ना, पिछले जन्म में भी बहुत कुछ किया है आपने, है ना? तो वो विशाल दृष्टिकोण से देखना पड़ता, इसीलिए योग बहुत आवश्यक है। योग मार्ग में क्या है, जो जो कर्म है हमें वो हम कट जाते हैं, और जो दुख आ सकता है आगे उसको पहले से रोकने का मार्ग ही योग है।
1: आपने बोला कि दृष्टिकोण को बड़ा करो, पिछले जन्म की भी या प्रारब्ध आपके साथ आ रहा होगा जिसकी वजह से आपको दुख या सुख झेलने पड़ रहे हैं, पर हमें पूर्व जन्म की चीजें याद क्यों नहीं रहती हैं?
0: अच्छा, ये कोई बड़ी बात नहीं, आजकल लोग ध्यान करोगे तो सब जान लोगे, उसको कोई दिक्कत नहीं। 3 घंटे टाइम लेके बैठ जाना, अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो बहुत लोग करते हैं, और इस तरह से हमारे यहाँ एटर्निटी प्रोसेस बोलते हैं, एक टीचर के साथ बैठो और आप पीछे पीछे ले जाएंगे, मगर जान के भी क्या करना है, ये सब जान के करना क्या है, आगे बढ़ते जाना चाहिए। अपना समाधान के लिए, अपना तसल्ली के लिए जानना हो तो जान ले, हम नहीं जानते हैं इसलिए नहीं है, ये नहीं है हम नहीं जानते, मगर था ही सही
1: जी ना? एक प्रश्न पुराने वाले प्रश्न से जुड़ा हुआ है कि कर्म अच्छे या बुरे, तो कर्ण और दुर्योधन को जैसा कि मैंने महाभारत में पढ़ा है कि स्वर्ग मिला था, उनके कर्म तो अच्छे रहे नहीं, फिर स्वर्ग कैसे मिला उनको?
0: हाँ, यही प्रश्न मुझे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थी ना जयललिता, उसने पूछी। उसने कहा, गुरुदेव जीवन भर अच्छा किया दुर्योधन धर्मराज ने, बाद में उनको स्वर्ग मिला कि नहीं मिला पता है, मगर दुर्योधन जीवन भर गलत किया, यहां पर भी उसने अच्छे से राज्य किया, मर के भी उसको स्वर्ग मिल गया, तो अच्छे क्यों रहना है? हम भी क्यों घोटाला क्यों नहीं करें, ये बताइए, हम नेक व्यक्ति रहे। देखिए, वो तो उस वक्त पद से हार गई थी इलेक्शन में, तो बोले देखिए ये आदमी आए, इतना इसने नुकसान करता, इतना ये बातें जो भी, तो हम अच्छे क्यों रहना है? हमने कहा, तुम्हें पता है क्या दुर्योधन चैन से सोया था कि नहीं? तुम गलत करोगे तो तुम्हारी नींद हैरान हो जाएगी, भाई इधर भी तुम कुछ नहीं हो, है ना? मगर अपने यहाँ कई पुराण में है, आखिरी दम में वो हरि का स्मरण किया, फिर उनको मुक्ति मिल गई। अजामिल का है और लोगों का और भी भक्तों का ऐसी है कहानी, इसका मतलब यही है कर्म कटने के लिए बहुत समय नहीं लगता। मतलब एक कमरे अंधेरा रहा 20 साल में बंद रहा, तो उसमें रोशनी आने के लिए 20 साल नहीं लगता, क्षण भर में आ सकता है। इसलिए कहते पाप क्या कर्म क्या तू बुला दो, कर्म की चिंता ना करो, ये परीक्षा ना होगी दोबारा, तो तुम अपने में टिक जाओ, ज्ञान ज्ञान अग्नि धक धक कर मानी। भगवान ने गीता में कहा जितना भी दुराचारी रहो हो मगर मेरे पास आ जाता है तो उसका सारा दुष्कर्म कट जाएंगे, बोले है ना। तो ऐसा ही है, तो दुर्योधन जीवन भर कुछ किया हो आखिरी में बुद्धि तो आ गई, भगवान के पांव पकड़ लिया तो उसको भी मिल गया। आप इसको इस तरह से समझो ना, आप एक डायरेक्टर हो, एक डायरेक्टर के दृष्टिकोण से विलन भी हीरो भी बराबर होते हैं, दोनों को पैसे मिलते हैं, कई बार विलन को ज्यादा पैसे मिलते हैं हीरो से, हीरो ना हो तो विलन ही नहीं हो। सो वो हम यदि ये पात्र में ही रहते हैं तो हम फंसे रहते हैं, इससे ऊपर उठ के निर्देशक के स्तर से सोचते हैं सत्य अनावरण होता है, वो बात ही कुछ अलग होती है। यही हमारे सारे मंदिरों में पुराणों में यही दर्शाता है, किसी भी मंदिर में जाओ पहले दीवार में सब राक्षसों का यक्षों का इन सब का चित्र रहता है और अंदर जाए तो गर्भस्थान में भगवान का मूर्ति रखते हैं। इसका मतलब यही है जीवन में सब कुछ होता है, ये सब रिलेटिव है और इन सब को लेके आगे बढ़ना चाहिए और इन सब के पार जाना चाहिए।
1: इसीलिए जब धर्मराज ने अपनी पत्नी को जुए में दांव पे लगाया उसके बाद भी उनको धर्मराज बोला जाता रहा, जबकि ये तो धर्म नहीं था पत्नी को दांव पे लगाना।
0: हाँ हाँ, नाम तो पहले याद, नाम तो पीताम्बर दास होते हैं या लक्ष्मीपति होते हैं और तो भिक्षा भी मांगते हैं। धर्मराज में बहुत सारे गुण थे, बस उनमें एक नुक्स ये थी, वो एक वीकनेस होता है ना व्यक्ति में, वो उसमें कमजोरी उनका ये था जुआ खेलना। अब लोगों में बहुत सारे गुण भी होते हैं मगर उनमें कुछ ना कुछ ऐब होता है, इसलिए धर्मराज को किसी ने भगवान नहीं बोला, सिर्फ कृष्ण को भगवान कहे।
1: गुरुदेव, ये मेरा प्रश्न है कि अगर भीष्म पितामह पहले ही विवाह करने के लिए हाँ बोल देते और अपनी उस प्रतिज्ञा के लिए अडिग नहीं रहते
0: तो सब बातें खत्म हो जाती, महाभारत होता ही नहीं
1: वही। तो क्या उनका इतना अडिग रहना सही था कि उन्होंने पूरे कुल का और पूरा सब विनाश और कर दिया?
0: ठीक तो है। महाभारत होता ही नहीं था तब तो, महाभारत होने के लिए ये सब होना था ना, इसीलिए महाभारत कहते हैं, जहाँ पर हर तरह की झगड़ाए झंझट मनस्ताप ये सब होता है।
1: अच्छा, डू यू थिंक द्रौपदी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर महाभारत? डू यू थिंक द्रौपदी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर महाभारत?
0: वेल, when you see the whole thing as a leela, you see the divinity, the Parabrahma has made all these roles. If you see the Purana, that's what you see. But the Rakshasas, they were the doorkeepers of heaven. Then they were asked to go in the world in 3 lifetimes as bad guys or 100 lifetimes as good guys. They chose to be 3 lifetimes. You have heard these stories, right? So all this indicates in duality there is always two sides, good and bad. That is what it is, duality. So you try to find solution in duality, you're not going to find. See, when you see Krishna, you have many facets of Krishna. He is too complete in everything. But if you see the Jains, they put Krishna in hell.
1: Yes.
0: Narak mein daal dete. Magar they could not keep him in Narak alone. He said, agle jo yug mein, he will become the first Tirthankar. Iska matlab, Sri Krishna mein wo dono baat, like Krishna was responsible for the war. Nobody else. Arjuna was going to run away to Himalayas. Nothing he wanted. But Krishna brainwashed him thoroughly. Telling one after another, he says this, he said that. It's so confusing. And made him fight the war and win. So, Bhagwan Krishna nahi ho to, to fir yudh hi nahi hota. Hota hai ka? Isliye Jaino ne Krishna ko narak mein dala. Magar Krishna jaise yogi, jnani, parmatma, Bhagwan aur koi dikhi nahi sakte. Dikhi nahi sakte. To unhone unko pehla tirthankar bhi kar diya. So, हमें क्या करना है? ये सब जो है आपको इंडिकेट करता है क्या इन सब से ऊपर एक सत्य है वहां की ओर चलो
2: हवस्ता आदिश्रोता आज को लागि द आर्ट अफ लिविंग को संयोजन में संचालित यो कार्यक्रम अमृत धारा यति